ट्रीट रियल आओ क्लिंडा माइसिन कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी आओ दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हुम दी कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी आओ द दानो दाहुना प मुकमल तोगबानी खत्मई नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली आओ द स्किन देरे मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk

तीसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 031

0: ये है एक दुनिया इल्म व अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है द कादी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा। एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेस में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला आज कीजिए। हमारे कैंपसेस हकीमाबाद नौशहरा, बाग इरम मर्दान, शेरगढ़ मर्दान, सवावी, जैदा और मैनी चौक कोठा, या हेड ऑफिस के नंबर 09382801 पर राबता कर सकते हैं।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी, कहीं भी सुनिए। हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए। हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।

अच्छा, अगर आप भी मैदा मैदा इस तरह है कि आ रहे हैं सवाबी की तरफ तो आप लोगों को वेलकम कहते हैं जी, और अगर आप सवाबी से बाहर जा रहे हैं तो आप लोगों को हम यही कहेंगे कि दल्लोए अल्लाह पामान।

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk

मौसम संग यार परुनी मौसम खौफ डाला बाजार बाहर हो गई ये लगा दस हवा दस हवा नया रा लगा दस हवा मतलब बेहतरीन आदम रा ये लगा मरा लगा सब बल शांति होगा लगा ये उड़ेर जाता खेस्टे खोल कर डूली हवा वाले रा बेहतर हवा वाले खेरा लगा मावे की सवाल विवाल वासे मुझे मंगा प्रोग्राम उड़ी देखेरा नो

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है, बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

ये है एक दुनिया इल्म व अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है। द कादी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा, एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स, जम मरबूतों से जायद तलबा तालबात के लिए इसिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब कल का दानिशमंदाना फैसला